श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

श्री कृष्ण जन्मोत्सव को पावन अवसर में संपूर्ण आदरणीय श्रोता हार्दिक मंगलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्रालीद्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसी।

श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव को पावन अवसर में संपूर्ण आदरणीय श्रोता हार्दिक मंगलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

श्री कृष्ण जन्मोत्सव को पावन अवसर में संपूर्ण आदरणीय श्रोताहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव को पावन अवसर में संपूर्ण आदरणीय श्रोताहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार

श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

आसुरी विचारधारा बस जाती है तब उसे केवल अपना ही स्वार्थ नजर आता है। ऐसी परिस्थितियों में पाप का विकास होता है और धर्म का विनाश होता है। प्राणियों में सद्भावना नहीं रह जाती और राष्ट्र का पतन शुरू हो जाता है। लोगों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। द्वापर युग में कृष्ण का अवतार ऐसी ही विषम परिस्थितियों में हुआ।

ईश्वर में उसका विश्वास नहीं था। इसी बात को लेकर उसने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था और स्वयं राजा बन गया था। उसके राज्य में पूजा पाठ, हरि भजन व सारी धार्मिक क्रियाएं बंद कर दी गई थी। यज्ञशालाओं में गाय का मांस काटकर बिखेर दिया जाता था। हवन कुंडों में पानी डाल दिया जाता था।

शूरसेन के बेटे वसुदेव से किया। देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने स्वयं कंस रथ लेकर चला। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई।

प्याला है, होना तो कुछ और ही था। कंस की बुद्धि पलट गई, उसने वसुदेव और देवकी को उनके महल में ले जाकर छोड़ दिया। जब एक साल बाद देवकी के गर्भ से पहली संतान हुई,

साधुता देखकर कंस का विचार बदल गया। उसने वसुदेव के बच्चे की हत्या करने से मना कर दिया। कंस ने कहा, जीजा, मेरा काल तो आपकी आठवीं संतान है, सारे बच्चों की हत्या

नहीं, ईश्वर का धन्यवाद किया और उस बच्चे को लेकर चले गए। नारद जी ने जब ये देखा तो मन में सोचा, यदि कंस इसी तरह दयालु बन जाएगा और अच्छा आचरण करेगा तो कैसे चलेगा, धरती पर पाप बढ़ेगा नहीं तो प्रभु का अवतार कैसे होगा। वीणा बजाते हुए नारद जी कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस ने मुनि का स्वागत

श्री कृष्ण जन्मोत्सव को पावन अवसर में संपूर्ण आदरणीय श्रोताहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

से करने लगा। अब वसुदेव जी को जो भी संतान होती उसे छीन कर पत्थर पर पटक कर मार डालता। बेचारे असहाय और निर्दोष वसुदेव देवकी अपनी आंखों के सामने अपनी संतानों की निर्मम हत्या होते हुए देखते, पर कुछ नहीं कर पाते, बस विवश होकर रोते और ईश्वर को याद करते। धरती इस दुख को अब और सहन न कर पाई। उसने गाय का रूप धारण

नष्ट हो जाता है तब मैं अवतार लेता हूँ। अब समय आ गया है, मैं शीघ्र ही धरती पर अवतार लूंगा। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए और समय की प्रतीक्षा कीजिए। सारे देवता धरती के साथ श्री कृष्ण को नमन करके वापस आ गए। अब श्री कृष्ण ने धरती पर जाने से पहले अपने सारे जीवन की योजना बनाना प्रारंभ किया। उन्होंने सारे गोप गोपियों को ब्रज में जन्म लेने का आदेश दिया। वायु, सूर्य, इंद्र, धर्म और

महाभारत की रचना, द्वारकापुरी की रूपरेखा और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की आधारशिला तैयार की, फिर योग माया को बुलाकर कार्य समझाए।

महाप्रभु मुझे छोड़कर धरती पर जा रहे हैं, ये वियोग मैं कैसे सह पाऊंगी। तो श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से राधा को समझाया और बोले, राधिके तुम भी ब्रजभूमि पर जन्म ले रही हो, हम दोनों मिलेंगे, किंतु श्री दामा के शापवश हम दोनों को 100 वर्षों का वियोग तो सह

काल कोठरी उजियारे से भर गई। वसुदेव व देवकी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी आंखें चकाचौंध हो रही थी। परमपिता परमेश्वर ने उनके मन को समझा और स्वयं ही बोले,

कंस के सैनिकों का डर, भरी बरसात में किसी तरह डरते घबराते वो यमुना के किनारे पर पहुंचे तो यमुना का विकराल रूप देखकर और भी घबरा गए। अथाह जल के साथ यमुना उमड़ रही थी। वसुदेव जी किनारे पर पहुंचकर सोचने लगे, गोकुल पहुंचना आवश्यक है, अब यमुना को पार कैसे किया जाए। ईश्वर को याद किया और यमुना नदी में उतरकर आगे बढ़ने लगे। शेषनाग कन्हैया को बारिश से बचाने के लिए टोकरी के ऊपर अपना फन फैलाए वसुदेव के पीछे पीछे चलने लगे। वसुदेव जी को इसका ज्ञान नहीं था। वसुदेव जी

जी भर के प्रभु के चरणों को धोया, शीश पर धरा और चूमा। यमुना अब शांत हो गई, उनका उफान अब खत्म हो गया, जल स्तर घट गया। वसुदेव जी पार होकर गोकुल पहुंचे, प्रभु की माया से वहां भी सारा गांव सो रहा था। नंद के घर के सभी द्वार खुले थे, वसुदेव जी ने घर में प्रवेश किया और बालक को यशोदा की बगल में लिटा दिया। कन्या को उठाकर टोकरी में डाला और कारागार में वापस आ गए। कारागार में आते ही सभी दरवाजे स्वयं बंद हो गए, ताले लग गए, हथकड़ियां व बेड़ियां फिर से लग गईं, सभी पहरेदार जाग गए। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पहरेदार कंस को खबर देने के

श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

वर्ष में अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। शेर पे सवार होकर स्वर्ण मुकुट शीश पर धरे शोभायमान हो रही थी। कन्या ने आकाश से अट्ठास किया, उस अट्ठास को सुनकर

गोकुल में पैदा हो चुका है। ये सुनते ही कंस घबरा गया, थर थर कांपने लगा। माँ दुर्गा ये कहकर अंतर्ध्यान हो गई। उधर गोकुल में नंद के घर कन्हैया के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। ये दिन गोकुल अष्टमी के नाम से लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। सारे गोप गोपियां नगर निवासी सज धज कर उत्सव

कंस के मायावी राक्षस आते रहे और कन्हैया उन्हें मारते रहे। बगुले के रूप में बकासुर आया, कन्हैया ने उसकी चोंच पकड़कर तोड़ दिया। अजगर के रूप में अघासुर

भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: ગોરેલ છુચ્ચે પાટી
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव को पावन अवसर में संपूर्ण आदरणीय श्रोता हार्दिक मंगलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सवको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रेडियो अध्यात्म ज्योति परिवार।

0: ರಸಾವೇಲ್ ಸುಚ್ಚೆ ಪಾಟಿ
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट प्रसिद्ध लीला माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने आती थीं यशोदा के पास कि यशोदा, तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया, बहुत नुकसान कर दिया। तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई हैं। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते, माँ इन सब की बातें मत सुनना, सब झूठ बोल रही हैं, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया।

बाद में अचानक माँ पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया।

कन्हैया ने माखन खाया है। इतना ही नहीं, मां ने देख भी लिया। अब मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खायो, तो बस कन्हैया ने सोच लिया आप तो सिद्ध करके दिखला देना है कि मैंने माखन नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए कि अंत में सिद्ध कर दिया उसने माखन नहीं खाया। यहां तक कि मां से भी कहलवा लिया कि हां बेटा तूने माखन नहीं खाया। यही सुंदरता इस भजन में। सबसे पहला तर्क दिया, बोले मां तुमने कैसे सोच लिया कि मैंने माखन खाया, मेरे पास समय ही कहां है जो मैं माखन खाऊं।

रागों की रचना हुई है समय के अनुसार, अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के राग हैं। यहां वर्णन है भोर और सांझ दो समय का। नियम के अनुसार दोनों के अलग अलग स्वर होते हैं। आप ध्यान दें, मैं आपको भोर भोर के स्वरों में और सांझ सांझ के स्वरों में सुना रहा हूं। मेरा प्रयास है, शायद आपको लगे कि यह

नहीं चला ये तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे, माँ भला सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूं? कहां तुम टांग के रखती हो माखन?

मुस्कुरा दी, इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा तो बड़ी भूल रह गई, ये भी छुपाया, कहने लगे

नहीं चला ये तर्क। अब कन्हैया ने सोचा कि माँ की थोड़ी खुशामद करते हैं, तारीफ करते हैं तो शायद मान जाएगी, खुश हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अब देखिए, स्वर, लय, भाव, शब्द, इन सब की सहायता से ये दिखाना है कि कन्हैया माँ की खुशामद।

कोई असर नहीं हुआ। अब थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे माँ एक लाठी और एक कंबल मुझे दे दिया है और सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने, कल से ये काम मुझसे नहीं होगा।

कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी, कोई मां नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी। कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए और मां की ओर देख के बोले, मां ये माखन की बात नहीं है, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया है, तुम्हारे मन में क्या है आज मैं जान गया।

और मैया दोनों कंठ से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों को मालूम है माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। यहां सूरदास जी के शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने ही शब्दों में स्वीकार भी किया है। अभी तक मां कह रही है

जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण का अवतार जितना दुष्टों के संहार के लिए हुआ, उतना ही भक्तों के उद्धार के लिए भी हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर संसार को प्रेम की शिक्षा दी, समानता का उपदेश दिया। सौभाग्यशाली धर्म प्रेमियों, स्वार्थ किसी को भी अंधा कर सकता है, और वही हुआ कंस के साथ। कंस अपनी बहन देवकी को अपने प्राणों की भांति प्रेम करता था। यहां तक कि विवाह में विदाई होने पर देवकी को स्वयं रथ में बिठाकर विदा करने चल पड़ा। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हो, अरे ओ मूर्ख कंस, जिस बहन को इतने प्रेम

0: आदरणीय श्रोता, एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को यो विशेष प्रस्तुतिमा अहिले यहाँ हुनुहुन्छ।
1: एक दिन सबकी सब गोपियां इकट्ठा होकर नंद बाबा के घर आईं और यशोदा मैया को सुना सुना कर गोपाल की करतूतें कहने लगीं। अरे यशोदा, तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दुहने का समय ना होने पर भी यह हमारे घर जाकर हमारे बछड़ों को खोल देता है। हमारे डांटने पर यह नटखट ठठा कर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारा दूध दही चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल दूध दही खाता तो कोई बात नहीं थी, ये हमारे मटकों को भी पटक कर फोड़ देता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती है तो हमारे बच्चों को ही रुलाकर भाग जाता है। जब हम दूध दही छींकों पर रख देती हैं, जहां इसके हाथ नहीं पहुंचते, तब ये बड़े बड़े उपाय रचाता है। कभी दो चार पीढ़ों को एक दूसरे पर रख लेता है, कभी उखल पर चढ़ जाता है। इतने पर भी इसका काम नहीं चलता है तो बर्तनों में छेद कर देता है और सारा दूध दही गिराकर बर्बाद कर देता है। ऐसा करके भी ढिठाई करता है और हमें ही चोर बताता है तथा खुद घर का मालिक बन जाता है। मन ही मन प्रसन्न होते हुए तथा ऊपर से रोष प्रकट करते हुए गोपियों ने गोपाल की खूब शिकायत की। मां यशोदा ने कहा, कान्हा, तुम्हारी रोज रोज की शिकायतों से तो मैं तंग आ गई हूं। इन गोपियों को देख, ऐसे तेवर दिखा रही थी जैसे गोकुल की सारी गायें इन्हीं की हों। गोपाल, हमारे यहां दूध दही की क्या कमी है जो तू दूसरों के यहां जाता है? आज से तुम इनके दरवाजे पर कभी मत जाना। गोपाल ने कहा, मैया, ये सब खुद मुझे बुलाती हैं और ऊपर से शिकायत भी करती हैं। आज से मैं यही खेलूंगा और इनके यहां कभी नहीं जाऊंगा। मैया ने गोपाल को भली भांति सजाकर उनके हाथ में मुरली थमा दी और उन्हें माखन मिश्री खाने के लिए दिया।

पर आ गए। वहां उन्होंने देखा कि सामने एक काला नाग अपना फन निकालकर उनके सौंदर्य का रस पान कर रहा है। गोपाल उसके साथ नाना प्रकार के खेल करने लगे। नाग भी उनकी मधुर बाल लीला का आनंद लेने लगा। थोड़ी देर बाद कन्हैया को देखने के लिए यशोदा बाहर आईं और गोपाल को नाग के साथ खेल करते देखकर डर गईं। जल्दी से उन्होंने कन्हैया को नाग से दूर खींचा और कान पकड़कर उन्हें धमकाने लगीं। उन्होंने कहा, कान्हा, तुमने मेरा कहना नहीं माना और बाहर आकर नाग से खेलना शुरू कर दिया। आज मैं तुम्हें दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। कान्हा भयभीत नजरों से मां की तरफ देखने लगे और क्षमा मांगने लगे। काल भी जिनसे भयभीत रहता है, ऐसे त्रिलोकी नाथ आज मां के सामने भयभीत खड़े हैं। एक बार मोहन दूध पीने के लिए मां यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से मां के स्तनों से अपने आप दूध झरने लगा। वे मोहन को दूध पिलाते समय उनका मंद मंद मुस्कान युक्त मुख निहारने लगी। इतने में अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी मोहन को अतृप्त छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गईं। इससे मोहन को क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्होंने पास पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ डाला तथा वहीं पर उल्टा पड़े हुए ऊखल पर चढ़ गए और छींके पर रखा हुआ माखन बंदरों को बांटने लगे। उन्हें यह भी डर लग रहा था कि कहीं मेरी चोरी खुल ना जाए, इसीलिए चौकन्ने होकर चारों तरफ देखते भी जाते थे। यशोदा जी ने औटते हुए दूध को उतारकर एक तरफ रख दिया, फिर दूसरे घर में आई। वहां देखती हैं कि दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गईं कि ये सब मेरे लाला की करतूत है। इधर उधर ढूंढने पर यशोदा मैया ने देखा कि श्री कृष्ण ऊखल पर खड़े हैं और मटकों से माखन निकाल निकाल कर बंदरों को खिला रहे हैं। बंदर भी बड़े ही प्रेम से कन्हैया के हाथ से माखन लेकर खा रहे हैं, मानो जन्म जन्मांतर के भूखे हों। भूखे क्यों नहीं रहते, उन्हें परमात्मा के हाथ का प्रसाद जो मिल रहा था, इसके लिए कई जन्मों तक उन्होंने तपस्या की थी, तब जाकर ये दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऊखल पर निश्चिंत खड़े होकर श्री कृष्ण माखन बांट रहे थे, मानो रामावतार में जो वात्सल्य का वितरण बाकी रह गया था उसे पूरा कर रहे हों। यह देखकर यशोदा जी पैर दबाए हुए पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने अपनी मां को हाथ में छड़ी लिए हुए देखा तो ओखली पर से कूद कर भागे। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद भी जिन भगवान की लीला में प्रवेश नहीं पाते हैं, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। उनके हाथ में छड़ी थी तथा उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं। श्री कृष्ण अपनी भयभीत आंखों से मां की तरफ देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि जब मां ही पीटने के लिए तैयार है तो मुझे कौन बचाएगा। उनके नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। मां ने डांटते हुए कहा, अरे वानर बंधो, अब तुझे माखन कहां से मिलेगा। श्री कृष्ण ने दूर से ही कहा, मैया मुझे मत मार। माता ने कहा, लाला, यदि पिटने का इतना ही भय था तो मटका ही क्यों फोड़ा। श्री कृष्ण ने कहा, अरे मैया, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, तू अपने हाथ की छड़ी नीचे डाल दे। मां ने कहा, आज तो मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू ना तो ग्वाल बालों के साथ खेल सकेगा और ना माखन चोरी का उधम ही मचा सकेगा। भला यदि कोई असुर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो भगवान सुदर्शन चक्र का स्मरण करते,
लेकिन

0: आखिर गोपाल पकड़े गए। यशोदा ने कहा कि मैं तेरी शरारतों से तंग आ चुकी हूं, आज तो मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब की बार इसे रस्सी से बांध देना चाहिए, खदेड़ने पर ये कहां कहां वन वन भटकता फिरेगा, भूखा प्यासा रहेगा, इसीलिए थोड़ी देर के लिए इसे रस्सी से बांध दूं, दूध माखन तैयार होने पर फिर इसे मना लूंगी। जब मां यशोदा अपने नटखट गोपाल को रस्सी में बांधने में लगी, तब वह दो अंगुल छोटी पड़ गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी रस्सी जोड़ी और वह भी छोटी पड़ गई। इस प्रकार वे रस्सी पर रस्सी जोड़ती गईं, किंतु वे सब मिलकर भी दो दो अंगुल छोटी पड़ती गईं। यशोदा ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे मोहन को ना बांध सकी। वे मन ही मन सोचने लगी, मुट्ठी भर की तो इसकी कमर है, फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सी से ये नहीं बंधता है, हर बार दो अंगुल की ही कमी रहती है, ना तीन की ना चार की, ये कैसा अलौकिक चमत्कार है। यशोदा जी आश्चर्यचकित रह गईं। गोपाल ने देखा कि मेरी मां का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, वे थक गई हैं, तब कृपा करके स्वयं बंध गए। भगवान श्री कृष्ण इतने कोमल हृदय हैं कि अपने भक्त के प्रेम को पुष्ट करने वाला थोड़ा भी परिश्रम सहन नहीं कर सकते और भक्त को परिश्रम से मुक्त करने के लिए स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लेते हैं। भक्त का श्रम और कृपा की कमी, यही दो अंगुली की दूरी है। जब भक्त ये सोचता है कि मैं अपने परिश्रम से भगवान को बांध लूंगा, तब वह भगवान से एक अंगुल दूर हो जाता है और भगवान अपनी कृपा को समेटकर उससे एक अंगुल और दूर हो जाते हैं। जब मां ने देखा अब तो गोपाल बंध गए, कहीं नहीं जा सकते, फिर घर के काम धंधों में लग गईं। उखल में बंधे हुए गोपाल ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन ऐश्वर्य और सौंदर्य की कोई कमी नहीं थी। इनका घमंड देखकर ही देवऋषि नारद ने इन्हें श्राप दिया था और वे वृक्ष हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, ये दोनों मेरे प्रिय भक्त कुबेर के पुत्र हैं, इन्हें वृक्ष योनि से मुक्त करना चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण ने धीरे धीरे उखल खिसकाते हुए दोनों वृक्षों के बीच अड़ा दिया। दामोदर भगवान गोपाल की कमर में रस्सी कसी हुई थी, उन्होंने उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही वृक्षों की जड़ें हिल गईं। दोनों वृक्ष बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों से अग्नि के समान दो तेजस्वी पुरुष निकले। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग श्रीमद से अंधे हो रहे थे, देव श्री नारद ने श्राप देकर भी तुम्हारा कल्याण ही किया था, इसीलिए नलकूबर और मणिग्रीव तुम लोग अब अपने घर जाओ, तुम्हें माया मोह से छुड़ाने वाली मेरी भक्ति प्राप्त हो।
1: भगवान के अवतार के अनेक उद्देश्यों में गायों की पूजा एवं संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि गायों के अंदर सभी देवताओं का निवास है। गाय सर्वदेवमयी है, गाय की पूजा से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है तथा उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। इस संसार में गाय का मां जैसा ही स्थान है, क्योंकि वह मां की तरह ही वात्सल्य की साकार मूर्ति है। इसीलिए गोपाल ने अपना बचपन गो पूजा से आरंभ कर अपना गोपाल नाम सार्थक किया। गोपाल को गायें अत्यंत प्रिय थीं, वे उनकी खूब सेवा करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा, मित्रों, संसार में गाय जैसा उपकारी और कोई नहीं है, ये हमें अमृत के समान दूध दही घी देकर माँ की तरह हमारा पोषण करती है, अतः ये माँ की तरह वंदनीय तथा पूजनीय है। आज गोपाष्टमी है, हम लोग गौ माता का खूब अच्छी तरह फूलों तथा रत्नों से श्रृंगार करेंगे, उन्हें नाना प्रकार के पकवान अर्पित करेंगे तथा सभी उपचारों से उनकी भली भांति पूजा करेंगे। संसार में गौ सेवा और गौ पूजा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है तथा उनके आशीर्वाद से बड़ा देव मुनि किसी का आशीर्वाद नहीं है। गायों की पूजा ईश्वर पूजा है, इनकी सेवा और पूजा करने वाले को संसार की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। इसीलिए आज हम सब इन वात्सल्यमयी गौ माताओं की सेवा करके इनके अनंत उपकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। गोपाल के आदेश की देर थी कि सभी गोप बालकों ने गेंदा मालती गुड़हल कमल आदि अनेक प्रकार के पुष्पों का ढेर लगा दिया। सब लोगों ने मिलकर गायों का विविध प्रकार से श्रृंगार किया, उन्हें अनेक प्रकार के हार तथा फूल मालाएं पहनाई तथा उनके गले में मधुर ध्वनि करने वाली घंटियां बांधी। भगवान श्याम सुंदर ने स्वयं गायों को सजाया तथा उन्हें नाना प्रकार के पकवान खिलाए। सभी गायों ने शांत भाव से खड़े होकर उनकी पूजा ग्रहण की तथा मन ही मन अपने मूक आशीर्वादों से ग्वाल बालों की झोलियां भर दी। अंत में सभी ग्वाल बालों के साथ गोपाल ने गायों से बचा हुआ प्रसाद पड़े

श्री कृष्ण की लीला विचित्र है, उनकी कृपा कब और किस पर तथा कहाँ हो जाए कहना कठिन है। गोपाल जिसके ऊपर कृपालु हो जाए, फिर उसे संसार के किसी व्यक्ति की कृपा की आवश्यकता नहीं रहती। गोकुल में एक फल बेचने वाली रहती थी, वह इतनी गरीब थी कि दिन रात परिश्रम करने के बाद भी मुश्किल से दो रोटी की व्यवस्था कर पाती। वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, संतोषी इतनी थी कि वह अपने भगवान से भी अपना दुख नहीं कहती थी। दिन भर श्रम करने पर जो कुछ भी रूखा सूखा उसे मिल जाता, भगवान का भोग लगाकर उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। एक दिन वह अपने सिर पर फलों की टोकरी लेकर दिन भर गोकुल की गलियों में घूमती रही, किंतु पूरे दिन में एक भी ग्राहक उसे फल खरीदने वाला नहीं मिला। थक हार कर वह नंद भवन के सामने निराश होकर बैठ गई। वह सोच रही थी, आज पता नहीं किस अभागे का मुख देखकर उठी थी। पूरे दिन श्रम करने के बाद एक भी ग्राहक नहीं मिला। उसे क्या पता था कि आज उसकी जन्म जन्मांतर की तपस्या पूरी होने वाली है। आज साक्षात जगदीश ही उसके ग्राहक बनेंगे, फिर उसे जन्म भर किसी अन्य ग्राहक को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण भक्त के मन की इच्छा पहले ही समझ जाते हैं। ये फल विक्रियनी के धैर्य की अंतिम परीक्षा चल रही थी। कोई भक्त यदि भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो वे दो कदम उसकी तरफ बढ़कर उसके दुख दरिद्रता को हर लेते हैं। अंत में नंद भवन के द्वार पर फल विक्रियनी ने अंतिम गुहार लगाई, फल ले लो, कोई घर में है, मीठे ताजे फल ले लो। उस समय माँ यशोदा भी घर पर नहीं थी, वे आवश्यक कार्यवश कहीं बाहर गई हुई थी। गोपाल घर में अकेले थे और भक्त पर कृपा करने का सुंदर अवसर आ गया था। श्री कृष्ण ने इधर उधर देखा, कोने की डालियों में धन रखा हुआ था। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों की अंजुलि बनाकर उसमें धान भर लिया और फल बेचने वाली की ओर दौड़े। उनकी अंगुलियों के बीच से धान गिरते जा रहे थे। उनकी कृपापूर्ण दृष्टि फल बेचने वाली पर लगी हुई थी। भक्त और भगवान के मिलन की अद्भुत घड़ी थी। उन्हें ध्यान ही नहीं था कि उनके हाथों से धीरे धीरे सारा धान गिर गया। जब गोपाल फल बेचने वाली के पास पहुंचे तो उनकी अंजुलि में केवल दो धान बचे हुए थे। उन्होंने फल विक्रियणी के पास पहुंचकर कहा कि ये धान ले लो और बदले में फल दे दो। फल बेचने वाली भगवान गोपाल को मुग्ध होकर देखती ही रह गई। आज उसकी जन्म जन्मांतर की साध जो पूरी हो गई। उसने श्री कृष्ण से बड़े ही प्रेम से धान लेकर फल दे दिया। घर आकर देखती है कि उसकी टोकरी रत्नों से भरी हुई है। नंद बाबा गोकुल में असुरों के बढ़ते हुए उत्पात को देखकर समस्त गोप गोपिकाओं और ग्वाल बालाओं के साथ वृंदावन में आ गए। वृंदावन का हरा भरा वन, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर तटों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के आनंद का पारावार न रहा। उनके मन में विशेष प्रीति का उदय होने लगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर लीलाओं से गोकुल की तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंदित करते रहे। थोड़े ही दिनों में वे बछड़ों को भी चराने लगे। वे ग्वाल बालों के साथ गौशाला के आसपास बछड़ों को चराते तथा नाना प्रकार के खेल करते थे। कहीं वे बांसुरी की मधुर तान छेड़ते तो कहीं बंदर कोयल आदि बनकर उनके स्वर की नकल करते थे। इस प्रकार वृंदावन देवताओं के नंदवन से भी अधिक मनोरम हो गया। श्री कृष्ण बलराम की मनोहर लीलाओं से वृंदावन का कण कण धन्य हो गया। ग्वाल बालों के सौभाग्य का क्या कहना, उन्हें तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना सखा बनने का दुर्लभ सौभाग्य दिया था। भगवान श्री कृष्ण की वंशी की मधुर टेर पर वन के पशु पक्षी उनके नजदीक आ जाते तथा बछड़े उनका पैर चाटते थे। एक दिन श्याम और बलराम अपने प्रेमी ग्वाल बालों के साथ
यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे, उसी समय उन्हें मारने के लिए एक महाबलशाली दैत्य आया। कंस ने उसे श्री कृष्ण को समाप्त करने का आदेश दिया था। उसने एक सुंदर बछड़े का रूप बनाया और बछड़ों के झुंड में घुस गया। वह देखने में इतना सुंदर था कि जो उसे देखता वही मुग्ध हो जाता। उसका नाम वत्सासुर था। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वत्सासुर सुंदर बछड़े का रूप बनकर बछड़ों के बीच घुस रहा है, तो वे बलराम जी को संकेत से समझाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। वत्सासुर ने सोचा, श्री कृष्ण मुझे पहचान नहीं रहे हैं और सुंदर बछड़ा समझकर स्वयं मृत्यु के मुख में चले आ रहे हैं। आज मैं गोकुल में मारे गए राक्षसों का बदला इस उदंड बालक को मृत्यु दंड देकर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण पीछे से जैसे ही वत्सासुर के करीब पहुंचे, उसने अपने पिछले दोनों पैरों को उठाकर श्री कृष्ण पर प्राण घातक हमला करना चाहा। गोपाल ने देखते ही देखते उसके दोनों पैरों को फुर्ती से पकड़ लिया और उसे उठाकर आकाश में जोर से घुमाते हुए सामने कैथ के पेड़ पर पटक दिया। उसका लंबा चौड़ा शरीर कैथ के वृक्ष को गिराते हुए धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मरते समय उसने अपने विशाल काय दैत्य शरीर को प्रकट किया। वत्सासुर का वध देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे प्यारे कन्हैया की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने भी बड़े ही आनंद से फूलों की वर्षा की। वत्सासुर के वध की घटना सुनकर सब गोप गोपी आश्चर्यचकित रह गए। नंद बाबा और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण की बार बार बलैया ली और इस विपत्ति से उन्हें सुरक्षित पाकर उनसे

कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मार डालने के उद्देश्य से ही धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। श्री कृष्ण पुरवासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए कंस की रंगशाला पहुंचे। उन्होंने कंस के रक्षकों के रोकने पर भी बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और सबके देखते देखते उसके दो टुकड़े कर डाले। जब धनुष के रक्षकों ने श्री कृष्ण को मारने के लिए घेर लिया तो श्री कृष्ण ने धनुष के उन्हीं टुकड़ों से उन सबको यमलोक भेज दिया। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला तथा राक्षसों का संहार कर डाला तो वह बहुत घबराया। उसे रात में बहुत देर तक नींद नहीं आई। उसे मृत्यु सूचक बहुत से अपशकुन दिखाई देने लगे। उसके कारण उसे बहुत चिंता हो गई। चारों तरफ श्री कृष्ण बलराम के रूप में उसे अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी। किसी तरह नाना प्रकार की आशंकाओं में उसने जागते हुए रात बिताई। दूसरे दिन कंस ने श्री कृष्ण को फिर मारने की इच्छा से मल क्रीड़ा का आयोजन किया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया। तुरही भेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगों के बैठने के स्थान को झंडियों और बंधनवारों से सजाया गया। सब लोग यथास्थान बैठ गए। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ श्रेष्ठ सिंहासन पर जा बैठा। पहलवानों के ताल ठोंकने के साथ बाजे भी बजने लगे। चाणूर मुष्टिक आदि कंस के प्रधान पहलवान अखाड़े के आसपास आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने कंस को तरह तरह की भेंटें दीं और फिर यथास्थान बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां कुवलया पीठ नाम हाथी खड़ा है। उन्होंने अपनी कमर कस ली और महावत को ललकारा, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दे, नहीं तो मैं हाथी के साथ तुझे भी यमराज के यहां पहुंचा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के धमकाने पर महावत तिल मिला उठा। उसे तो श्री कृष्ण को मार डालने का आदेश था ही। उसने अंकुश की मार से कुवलया पीड़ को क्रोधित कर श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवलया पीड़ ने श्री कृष्ण को झपट कर अपनी सूंड में लपेट लिया। श्री कृष्ण उसे जोर से एक घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीच जा छिपे। इसके बाद वे उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर उसे 100 हाथ तक घसीट लाए। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ से कुवलया पीड़ की सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर खेल खेल में पैरों से दबाकर उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और उन्हीं दांतों से हाथी और महावत दोनों का काम तमाम कर डाला। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने जिस समय हाथी के दांतों को लाठियों की तरह अपने कंधों पर रखकर रंगभूमि में प्रवेश किया, उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। जब कंस ने देखा कि इन दोनों ने कुवलया पीड़ को मार डाला, तब उसकी समझ में यह बात आ गई कि इनको जीतना बड़ा कठिन है। उस समय वह और भी घबरा गया। रंगभूमि में चारों तरफ श्री कृष्ण बलराम की ही चर्चा होने लगी।

0: यहाँहरू अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।
1: आज श्रोता निकै लामो प्रतीक्षा पश्चात अब हामी त्यो पावन घडीको नजिकै छौँ। केवल केही मिनटभित्रै हामी भगवान श्रीकृष्णको त्यो जन्म घडीको पावन घडीलाई स्पर्श गर्नेछौँ।
2: भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रंगभूमि में आने पर चाणूर और मुष्टि ने उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण चाणूर और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। भगवान श्री कृष्ण के अंगों की रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। चाणूर के प्राण निकल गए और वह कटे वृक्ष की भांति गिरकर शांत हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक को एक घूंसा जमाया और वह खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिरकर मर गया। देखते ही देखते कंस के पांचों प्रमुख पहलवान श्री कृष्ण और बलराम द्वारा मारे गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। चारों ओर उनकी जय जयकार और प्रशंसा होने लगी। परंतु कंस को इससे बहुत दुख हुआ, वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान प्रधान पहलवान मारे गए और बचे हुए भाग गए, तब उसने बाजे बंद करा दिए। कंस ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वसुदेव के लड़कों को बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और नंद को बंदी बना लो तथा वसुदेव देवकी को मार डालो। उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी शत्रुओं से मिला हुआ है, इसीलिए उसे भी जीवित मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बढ़ चढ़कर बकवाद कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण फुर्ती से उछलकर उसके मंच पर पहुंच गए। जब कंस ने देखा कि उसके मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आ गए, तब वह तलवार लेकर उठ खड़ा हुआ और श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए पैतरा बदलने लगा। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने कंस को पकड़ लिया। कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने केश पकड़कर उसे मंच से धरती पर पटक दिया। फिर श्री कृष्ण स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। कंस निरंतर शत्रु भाव से श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते उठते बैठते और सामने भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इसके प्रभाव से उसे सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। सबके देखते ही देखते उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर श्री कृष्ण में समा गया। कंस के मरते ही कंक इत्यादि उसके 8 छोटे भाई श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए दौड़े। बलराम जी ने क्षण भर में उनका काम तमाम कर डाला। उस समय आकाश में धुंधुभियां बजने लगीं। ब्रह्मा शंकर तथा इंद्रादि देवता बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करती हुई वहां आईं। भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने कंस की रानियों को समझाकर ढांढस बंधाया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने मरने वालों की लोक रीति के अनुसार क्रिया कर्म की व्यवस्था करवा दी। कंस के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और उनके चरणों की वंदना की। परंतु वसुदेव और देवकी ने उन्हें ईश्वर समझकर हृदय से नहीं लगाया। वे सोच रहे थे कि हम भगवान को अपना पुत्र कैसे समझें। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का ज्ञान हो गया है, इसीलिए माता पिता को मोहित करने के लिए अपनी योग माया को आदेश दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी के

के साथ अपने माता पिता के चरणों में झुककर प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने कहा, पिताजी माताजी, हम आपके प्रिय पुत्र हैं। आप लोग हमारे लिए सदैव चिंतित रहा करते थे। दुर्भाग्यवश हमें आपके पास रहने का सौभाग्य नहीं मिला, इसीलिए हमें माता पिता के लाड़ प्यार से वंचित रहना पड़ा। माता पिता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं। यदि कोई मनुष्य जीवन भर माता पिता की सेवा करता रहे, तब भी वह उनके उपकार से ऋण मुक्त नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके शरीर का ही मांस खिलाते हैं। जो अपने माता पिता, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ गए क्योंकि दुष्ट कंस के कारण हम आपकी सेवा न कर सके। हाय, पापी कंस ने आप दोनों को कितने दुख दिए। आप हमें क्षमा करें और अपनी सेवा का अवसर दें। अब हम आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। विश्वात्मा श्री कृष्ण की वाणी से वसुदेव देवकी मोहित हो गए। भला भगवान की योग माया के प्रभाव से बिना उनकी इच्छा के कौन मुक्त हो सकता है? इसलिए वसुदेव देवकी का तत्व ज्ञान क्षण भर में लोप हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता से क्षमा मांगी तो वसुदेव देवकी का पुत्र स्नेह पुनः उमड़ पड़ा। उन्होंने श्री कृष्ण बलराम को हृदय से चिपकाकर प्यार किया। बार बार उनके मुख पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को पाकर वसुदेव और देवकी का हृदय परमानंद से भर गया। वे भगवान के स्नेह पाश में बंधकर पूर्णता मोहित हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, यहां तक कि आंसुओं के कारण गला रुंध जाने से वे कुछ बोल भी ना सके। आज उनके संपूर्ण जीवन की तपस्या का फल मिल गया। वे पुत्र प्रेम से असीम समुद्र में आकंठ डूब गए। चारों ओर से आती हुई श्री कृष्ण बलराम की जय जयकार उनके कानों में मधुर रस घोलने लगी।

एक दिन माता देवकी ने श्री कृष्ण और बलराम से कहा, तुम दोनों मन वाणी से परे हो और योगीश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूं कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। आज मैं सर्वांतःकरण से तुम्हारी शरण हो रही हूं। मैंने सुना है तुम्हारे गुरु संदीपनी जी के पुत्रों को मरे बहुत दिन हो गए थे। उन्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए उनके पुत्रों को तुम दोनों ने यमपुरी से वापस ला दिया। इसीलिए आज मैं चाहती हूं कि तुम दोनों मेरी भी अभिलाषा पूरी करो। मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था वापस ला दो, ताकि मैं उनको एक बार भर आंख देख सकूं। माता देवकी की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और मेरे स्वामी श्री कृष्ण और बलराम सुतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अपने आसन से तत्काल उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद दैत्यराज बलि ने दोनों भाइयों को अपने सिंहासन पर बैठाकर उनके पांव पखारे और सपरिवार चरणोदक लिया। इसके बाद उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, अमृत के समान भोजन तथा अन्य विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की। दैत्यराज बलि भगवान के चरणों में बार बार अपना सिर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विहल हो गया। उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम खिल उठा। अब वे भरे स्वर से दोनों भाइयों की स्तुति करते हुए कहने लगे, बलराम जी, आप अनंत हैं, आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप सकल जगत के निर्माता हैं। आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा हैं। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन देकर कृतार्थ किया है। स्वामिन, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा मन आपके उन चरण कमलों में लग जाए, जिनका आश्रय ग्रहण कर प्राणी इस संसार सागर से पार हो जाया करते हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, क्योंकि जो प्राणी आपकी आज्ञा का पालन करते हैं वे विधि विषेद के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज, मेरी माता देवकी अपने 6 पुत्रों के लिए विशेष शोकातुर हो रही है। उन्हें कंस ने जन्म लेते ही मार डाला था। वे तुम्हारे पास हैं, अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए उन्हें यहां से ले जाना चाहते हैं। इसके बाद ये सब शाप मुक्त होकर आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इन्हें मेरी कृपा से सदगति प्राप्त होगी। दैत्यराज बलि ने देवकी के पुत्रों को भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम बालकों को लेकर द्वारका लौट आए तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। उन बालकों को देखकर देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बार बार गोद में लेकर उन्हें छाती से लगाती और उनके सिर सूंघती। पुत्रों के स्पर्श आनंद से सराबोर देवकी ने उन्हें स्तनपान कराया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन बालकों को आत्मज्ञान हो गया। तदंतर सबके देखते देखते वे सब वसुदेव देवकी को प्रणाम करके देवलोक चले गए। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी कारागार में बंद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को सांत्वना देने के बाद अपने नाना उग्रसेन को भी बंधन मुक्त किया तथा उन्हें पुनः मथुरा का राजा बनाया। कंस उन्हें कैद में डालकर जबरन स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था। भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन से कहा, नाना जी, अब आप यहाँ के राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा हैं। आप हम लोगों पर शासन कीजिए। मेरे रहते अब आपको कोई भय नहीं है। अब मैं आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा। बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे राजाओं के विषय में तो कहना ही क्या। इस प्रकार उग्रसेन को समझाकर
भगवान श्री कृष्ण ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर वैदिक मंत्रों से विधिवत उनका राज्याभिषेक करवाया। कंस के अत्याचार से घबराकर जो यदुवंशी इधर उधर भाग गए थे, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बुलवाया, उनका सत्कार किया तथा उन्हें खूब धन संपत्ति देकर अपने अपने घरों में बसा दिया। अब महाराज उग्रसेन के राज्य में सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के बाहुबल से सुरक्षित हो गए। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहा। चारों तरफ धर्म का साम्राज्य स्थापित हो गया। यदुवंशियों के संपूर्ण मनोरथ सफल हो गए। वे कृतार्थ हो गए, आनंद से अपने अपने घरों में विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ही विश्व के विधाता हैं। उनका वदन आनंद का सदन है, उनका सौंदर्य अपार है। यदुवंशी नित्य प्रति उनका दर्शन करके आनंद मग्न रहते। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान उत्साही और बलवान हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों से भगवान के मुखारविंद का अमृतमय रसपान करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा आदि को समझाकर बड़े आदर सत्कार से वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगाया और आंखों में आंसू भरकर गोपों के साथ व्रज के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य और अन्य ब्राह्मणों द्वारा श्री कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा तथा सवत्सा गायें दी। फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम विद्या प्राप्त करने की इच्छा से संदीपनी मुनि के पास उज्जैन गए। थोड़ी ही दिनों में वे संपूर्ण विद्याओं में निपुण होकर तथा अपनी सेवा से गुरु को संतुष्ट कर मथुरा लौट आए। भगवान को पुनः मथुरा में पाकर मथुरावासियों के आनंद का ठिकाना न रहा।

सत्राजित नामक यादव भगवान सूर्य का परम भक्त था। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उसे स्यमंतक मणि प्रदान की थी। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और वह जहां रहती वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा आदि प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। कभी कोई उपद्रव और अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, इससे यह बहुमूल्य वस्तु सुरक्षित हो जाएगी और तुम्हें यश भी मिलेगा। परंतु सत्राजित अहंकारी तथा अर्थलोलुप था। उसने भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को अपने गले में धारण कर शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला और मणि को छीन लिया। उसके बाद रक्षाराज जामवान ने सिंह को मारकर वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के ना लौटने पर सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मणि के लोभ में मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि पहनकर वन में शिकार खेलने गया था। जब श्री कृष्ण ने सुना कि सत्राजित मुझे ही कलंक लगा रहा है, तब वे उसे धो डालने के उद्देश्य से प्रसेन को ढूंढने के लिए नगर के कुछ गणमान्य नागरिकों को लेकर वन में गए। खोजते खोजते उन्होंने देखा कि जंगल में किसी सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब सिंह के पैरों का निशान देखते हुए वे लोग आगे बढ़े, देखा कि एक रीछ ने सिंह को मार डाला है। रीछ के पद चिन्हों के निशान देखते हुए सब गुफा तक पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज जामवान की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि श्रेष्ठ मणि को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मणि लेने के लिए आगे बढ़े, अचानक क्रोधित होकर जामवान सामने आ गए। उस समय उन्हें भगवान की महिमा और प्रभाव का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण से घमासान युद्ध करने लगे। भगवान के घूसों की चोट से जामवान के शरीर की एक एक गांठ फूट गई। पूरे 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जामवान का शरीर पसीने से लथपथ हो गया, उत्साह जाता रहा। अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया और कहा, प्रभो, मैं जान गया कि आप ही पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। मुझे पराजित करने की क्षमता किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। आप अज्ञानवश हुए मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जांबवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा की तथा अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अपनी नववधु जामवंती के साथ द्वारका लौट आए और मणि सत्राजित को लौटाकर अपने पर लगे कलंक को मिटा दिया। सुदामा नाम के एक ब्राह्मण श्री कृष्ण के परम मित्र थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में शिक्षा पाई थी। वे गृहस्थ होने पर भी संग्रह परिग्रह से दूर रहते हुए प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। भगवान की उपासना और भिक्षाटन यही उनकी दिनचर्या थी। उनकी पत्नी परम पतिव्रता और अपने पति के साथ हर अवस्था में संतुष्ट रहने वाली थी। एक दिन दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पति के पास गई और बोली, भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं, तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। वे इस समय द्वारका में निवास कर रहे हैं। आप वहां अवश्य जाइए। मुझे विश्वास है कि वे दीनानाथ आपके बिना कहे ही हमारी दरिद्रता दूर कर देंगे। जब सुदामा की पत्नी ने उनसे कई बार द्वारका जाने की प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा, धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा
इसी बहाने जीवन का यह सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने द्वारका जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कल्याणी, घर में कोई वस्तु श्री कृष्ण को भेंट देने योग्य हो तो उसे दे दो। ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चूड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए अपने पतिदेव को दे दिए। ब्राह्मण देवता उन चूड़ों को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में ये सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किस प्रकार होंगे। द्वारका पहुंचने पर सुदामा अन्य ब्राह्मणों के साथ पूछते हुए श्री कृष्ण के महल में पहुंचे। सब लोग उनकी दीनहीन अवस्था देखकर उन पर हंस रहे थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा, भैया, श्री कृष्ण से कह दो कि उनके मिलने के लिए उनका बचपन का सखा सुदामा आया है। पहले तो द्वारपाल को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने जाकर भगवान से कहा, प्रभो, दरवाजे पर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण खड़ा है। उसके तन पर चिथड़े झूल रहे हैं, पाँव में बेवाइयां फटी हैं। उसकी दरिद्रता देखकर द्वारका की धरती भी आश्चर्यचकित है। वह अपना नाम सुदामा बताता है, कहता है कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण अपने पलंग से कूद पड़े और नंगे पांव दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने सुदामा को अपने गले से लगा लिया और कहा, मित्र, तुम आए तो लेकिन बहुत कष्ट भोगने के बाद आए। द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को ले जाकर उन्हें अपने पलंग पर बिठाया, उनके पांव धोकर चरणामृत लिया तथा उनको स्नान कराकर रेशमी वस्त्र पहनने के लिए दिया। रुक्मणी जी स्वयं उन्हें पंखा झलने लगी और भगवान ने उन्हें नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन करने के लिए दिए। बहुत समय तक आपस में बचपन की बातें करने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? पहले तो सुदामा संकोच करते रहे, लेकिन अंत में श्री कृष्ण ने चूड़े निकाल ही लिए। भगवान ने उन 3 मुट्ठी चूड़ों के बदले सुदामा को 3 लोकों की संपत्ति दे डाली।

शोभा। अब केही सेकेन्डभित्रमा नै भगवान् श्रीकृष्णको त्यो जन्म पावन घडी जसको स्पर्शमा हामी हुनेछौँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हमेशा यही पावन खड़ी जिसमें भगवान श्री कृष्ण इस धरती में अवतरित हुए। जय श्री कृष्ण।